0: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर शनिवार का दिन है और हम आ गए हैं आज का संगीतमाला लेकर आप ही के लिए. और आज का ये संगीतमाला आप सुनेंगे मेरे यानी नीपा के साथ और मेरा साथ देंगे.
1: जी हाँ, आप ही का दोस्त और होस्ट मनीष. कैसे हैं आप? आई नो सास्केटून में थोड़ी सी ठंडक हो चुकी है और एहसास आपको हो ही रहा होगा कि सर्दियां आने वाली हैं, उनका आगमन हो रहा है. लेकिन अभी भी मौसम फ़िलहाल तो ठीक है आई बिलीव. और चाय की चुस्कियों के साथ आप हमारे गाने भी सुनेंगे और मज़े भी लेंगे. आज तो वाकई में बहुत ही प्यारा दिन है और हमारा आज टॉपिक भी बहुत ही प्यारा है.
0: जी हाँ, जैसे हमने सबसे पहले चलाया ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर. मनीष जी, देखिए सावन का महीना भी देखते देखते ख़त्म हो गया है और अभी पर्यूषण भी शुरू होने वाले हैं और मंडे से हमारे गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत होने वाली है. तो बस अभी देखिए, अभी हमारे फेस्टिवल का जो सिलसिला है, जो एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे त्यौहार आएंगे तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है ना.
1: बिल्कुल, त्योहारों का तो आनंद ही अलग होता है और जब सेलिब्रेशन होती है और मंदिर में जाने को मिलता है, यानी कि कहते हैं ना कि मंदिर और साथ में बहुत कुछ, यानी संगीत सुनने को, डांसेस और अब मिठाइयाँ खाने को, प्रसाद मिलता है, मतलब कितना कुछ होता है, मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटीज.
0: तो कोई त्यौहार होता है तो सबसे पहले खाना होता है और मंदिर जाकर जो हमें भगवान से, ईश्वर से या जो भी हमारा ऑल माइटी है, जिनका भी कोई भी फेस्टिवल होता है, जो जब मिलते हैं तो वहाँ से हम एनर्जी कितनी लेकर आते हैं वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम ज़रूर एक अंदर से फील करते हैं कि नहीं, ईश्वर को हम जो भजते हैं, उनका नाम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हम जुड़े हुए हैं हमारे ईश्वर के साथ.
1: बिल्कुल, आपने बात कही है एनर्जी की, तो आज मुझे लगता है जो हम टॉपिक जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो भी फुल ऑफ एनर्जी वाले एक्टर हैं, जो इंडस्ट्री में शायद ही उनका मुकाबला कोई और कर पाता है जब वो अपनी कला दिखाते हैं या फिल्म के अंदर आते हैं, कैरेक्टर में होते हैं. तो उनके जैसा वर्सटाइल एक्टर जो है अभी भी जो वो उन्होंने हासिल किया वह मुकाम, तो बहुत ही मतलब तारीफ काबिल है.
0: जी जी जी जरूर. तो उनका नाम मैं बताती हूँ, उनका नाम है राजीव भाटिया.
1: राजीव भाटिया, ये तो मैंने कभी नाम ऐसा सुना नहीं, राजीव भाटिया.
0: जी हाँ, राजीव भाटिया.
1: एक मिनट. ओके, दोस्तों आप भी इसी तरह सोच रहे होंगे, तो चलिए गाना चलाता हूँ और आई बिलीव मैं और आप दोनों एक साथ उनका नाम बोलेंगे इस गाने के बाद.

0: जी हाँ, हमें फोन आ चुका है और बिल्कुल, और कोई नहीं,
1: ये
0: द
1: हमारे
0: मैन, बॉलीवुड के सुपर डुपर हीरो, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, अक्षय कुमार। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना अर्शमीत जी। थैंक यू सो मच, आपने कॉल करके हमें सबसे पहले बताया और सही पहचाना आपने। बिल्कुल, अक्षय कुमार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं नेपा जी हम,
1: क्योंकि
0: क्योंकि
1: अभी हाँ 2 दिन पहले ही उनका भी बर्थडे
0: जी
1: था और हमें कोई ना कोई तो मनीष जी प्रोग्राम में टॉपिक तो चाहिए ना जिसके ऊपर हम बात कर सके, और ये प्रोग्राम ही हमारा जो होता है फिल्मी गीतों के बारे में होता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमें मौका, कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी है, तो अगर उसको हम ना यूज़ करें तो कैसा बात बनेगी। अक्षय कुमार की बात हो और अक्षय कुमार की फिल्मों की बात ना हो और उनके गानों की बात ना होता है तो हो नहीं सकता।
1: और
0: और उनके
1: उनका
0: गाने
1: कंट्रीब्यूशन काफ़ी है
0: काफ़ी
1: हमारे
0: है।
1: फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि 1987 में उन्होंने एक पहली फिल्म की थी आज, लेकिन उसमें उनका 7 सेकंड का भी कम होगा रोल, कि उन्होंने उन्होंने उसमें कुछ फाइट मास्टर का रोल किया था, लेकिन देखिए वही 7 सेकंड से पहला रोल उनका आज उस मुकाम पर उनको लेकर गया है। उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो डिसिप्लिन है, उसी की वजह से इंसान में अगर कोई भी टैलेंट ना हो ना मनीष जी, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन से चले और उनके दिल में चाह हो कि मुझे ये करना ही है, तो मुझे लगता है कोई भी बाधाएं उनको रोक नहीं सकती।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वैसे मैं कहूँ उनके बारे में, जो पास था जब उनकी मूवीज़ शुरू हुई थी, तो शायद इतना प्रेज़ उनको उस समय
1: नहीं
0: नहीं
1: मिला।
0: मिला था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने कुछ सुपर डुपर हिट मूवी, मोहरा वन ऑफ द मूवी है जो मेरे को याद है कि
1: जी
0: वो उनकी रही थी, और उससे उन्हें काफ़ी फेम और वो मिला था। तो कुछ होता है ना कि कहीं ना कहीं क्लिक होता है कि एक्टर जब अपनी शुरुआत करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि शुरू में आपको एकदम से फेम मिल जाए, उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते
1: ऑफ
0: हैं।
1: कोर्स।
0: तो और अक्षय कुमार के साथ तो शायद बैकग्राउंड भी, उनकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, उनके पेरेंट्स इस लाइन में नहीं है, मतलब वो हेरिटेड नहीं है, तो उन्होंने अपना मुकाम खुद से बनाया, तो इसीलिए आई बिलीव उनके बारे में। और मैं उसी पे आ रहा था बात, के हम हर हफ्ते जो लेते हैं टॉपिक, क्योंकि हम एक तरीके से इनडायरेक्टली उनको हम उनकी विशेस भेजते हैं, अपनी तरफ से हम एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे उनके गानों के माध्यम से। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम उनके गाने चला पा रहे हैं और उनको उनको हम उन दे रहे हैं एक तरीके से।
1: जी, तो वही कि देखिए वो भी दिल्ली से, दिल्ली में ही बड़े पड़े हुए हैं, और आप देखिए दिल्ली का नाम आते ही आपके चेहरे पे जो मुस्कान आ जाती है कि भाई
0: जी
1: हम
0: हाँ,
1: दिल्ली वाले
0: बिल्कुल, क्यों
1: कहाँ से
0: नहीं
1: कहाँ तरक्की
0: आएगी
1: कर चुके
0: ये तो
1: हैं।
0: बनता है। चलिए, गाना सुनवाते हैं हर्षमीत जी की फरमाइश का, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, फ्रॉम द मूवी मोहरा।

0: तो ये है हमारे अक्षय कुमार। और मनीष जी, आपको पता ही होगा कि जैसे आपने आप ही ने कहा कि उनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन पता है बचपन में ये जो कोई इंसान जो होता है, कोई भी अभी जो उन्होंने आज इतनी शोहरत और नामना हासिल की हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान पढ़ाई नहीं करता है या पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी अगर आपका लक आपके साथ में हो तो आप कोई भी नेम फेम कमा सकते हैं। तो अक्षय कुमार जी के साथ में यही हुआ कि वो पढ़ाई में तो इतने अच्छे नहीं थे और उनको पता नहीं था कि वो क्या करेंगे, तो वो जब स्कूल में फेल हुए थे तो उनके पापा ने उनको बड़ी, मतलब नेचुरली पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स उनको बुरा लगता ही है कि भाई तू करेगा क्या अब, अगर तू स्टडी में अच्छा नहीं है, तुझे स्टडी नहीं करनी तो तुझे करना क्या है। तो तभी उन्होंने जोश में कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। और देखिए जैसे तैसे करके उन्होंने अपना 10th ग्रेड ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने उनके एरिया में ना बाजू में उनका कोई फ्रेंड था, वो मार्शल आर्ट आर्टिस्ट था, तो वो अच्छे से मार्शल आर्ट करता था और सब लड़कियां उनके पीछे बहुत दीवानी होती थी। तो वो बोलते ना जो एक अपना रोब जमाते थे कि मुझे फाइट आती है, मैं मतलब ब्लैक बेल्ट हूँ, तो उनको ज़रा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि मुझे भी अभी मार्शल आर्ट सीखना है। तो उन्होंने 10th के बाद में फिर वो चले गए थे थाईलैंड, हांगकॉन्ग, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी साल तक मार्शल आर्ट सीखा। और उनके शुरुआत के करियर में उन्होंने, देखिए हम सबको पता है जब हम इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो साइड में काम करना ही पड़ता है, तो उन्होंने तब रेस्टोरेंट में भी काम किया था और उन्होंने वहाँ पे ब्लैक बेल्ट हासिल किया था। तो वो डिसिप्लिन जो था वही उनको वहाँ तक ले गए थे। और उनके पेरेंट्स ने उनको हमेशा कहा थे जो पसंद है वो करो। और देखिए फिर वो मार्शल आर्टिस्ट बन गए और ब्लैक बेल्ट होने के बाद वो इंडिया वापस आए, तो वहाँ पे फिर उन्होंने छोटा मोटा भी काम किया था। वो कुंदन ज्वेलर्स के लिए भी कुछ सेल्समैनशिप कर रहे थे और फिर यही बच्चों को वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे। तभी एक स्टूडेंट के पापा ने उनको कहा कि आप मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करते, और अक्षय कुमार ने कहा ये क्या होता है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। और उन्होंने फिर अपना एक किस्मत आजमा ली, वो कहीं पे कुछ ऑडिशन चल रही थी और वो वहाँ पर पहुँच गए और उनको फर्नीचर की कुछ कमर्शियल के लिए उनको वहाँ पे बिठाए, बोले एसी रूम था और वहाँ पर बैठे और एक लड़की आई और उनके साथ उन्होंने जो भी काम किया तो उसको तब भी 21,000 रुपीज़ मिले थे, 21,000। तो अक्षय जी ने सोचा कि अरे वाह, मैं जो मार्शल आर्ट में एक महीने में जितना 5,000 कमा लेता हूँ, यहाँ पे तो बस पूरा एक दिन काम किया और उसमें मुझे 21,000 रुपये मिले, तो ये जो फील्ड है वो कुछ बुरा नहीं है। और फिर उन्होंने इस फील्ड में आने का सीरियसली सोच लिया था। और देखिए उनकी बातें हम आगे करते रहेंगे। तो अगला गाना आप कौन सा सुनाना चाहते हैं?
1: चलिए सुनते हैं मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मैं खिलाड़ी तू नाड़ी।

मनीष जी, जब एक मुझे मैसेज आया है कि अक्षय कुमार का नाम आते ही उनके दिमाग में यही फिल्म का गाना आया था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, तो उषा जी की फरमाइश पर चलिए सुना देते हैं यही फिल्म का बहुत ही सुरीला और प्यारा गाना है, और मुझे लगता है ये गाना हमेशा से हमें ऑल टाइम फेवरेट होगा।

0: अक्षय कुमार को हमेशा शुरू शुरू में ना, क्योंकि वो मार्शल आर्ट उनको आता था तो उनको एक्शन हीरो कहा जाता था। तो हमेशा से आप देखिए शुरू शुरू में जो भी फिल्में आती थी ना, उसमें जब जहाँ पे भी एक्शन होता था वहाँ पे अक्षय कुमार को लेते थे। और पता है कि अक्षय कुमार की तुलना टॉम क्रूज के साथ की जाती है। महेश भट्ट खुद ने कहा है कि अगर हॉलीवुड के पास टॉम क्रूज है तो हमारे पास है हमारा
1: अक्षय कुमार। बिल्कुल
0: वही तो है, क्योंकि आपको भी पता ही होगा वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं ना, कभी भी उन्होंने डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया है। और उनको स्टंट करने में बहुत ही मज़ा भी आता है और वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो उनको मार्शल आर्ट आता है। तो अगर जो चीज़ हमें आती हो, अगर वही आप प्रोफेशन बना लो, तो उसका जो उससे जो आपको जो नामना मिलती है वो हम देख ही रहे हैं कि अक्षय कुमार को आज भी वो डिसिप्लिन से सुबह उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। उन्होंने जब से सूर्योदय जिसको सनराइज कहते हैं वो कभी भी उन्होंने आज तक मिस नहीं किया। तो सोचिए वो कितनी जल्दी सोते होंगे और कितना जल्दी उठते होंगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारी बातें हम करते रहेंगे। और अगला जो गाना है वो मैं सुनाना चाहूँगी, फिल्म आई थी सुहाग, इसमें भी अक्षय कुमार और शायद सुनील शेट्टी साथ में हैं। और गाने के बोल हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।

0: Saskatoon's number one gourmet, Detroit-style, cheesy crust pizza. For your chance to win the ultimate gaming and pizza party from VR Matrix and Paradox Pizzeria and Brewery, plus entry into grand prize draw number one, donate $35 or more to F-Emphasis before the October 28th deadline. F-Emphasis at CFCR. No hits, no misses. Find details and donate today at cfcr.ca/donate.
1: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, जो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं ICCA के सौजन्य से, यानी इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन, जो कि आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाती है संगीत माला। और आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी के बारे में। उनके जन्मदिन था 8 तारीख को और उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके गानों के माध्यम से। तो हमें फरमाइशें भी बहुत आ रही हैं और आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं 3062425002 पर, और जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं हम ज़रूर वो प्ले करेंगे। अभी हमारे पास फरमाइश आई है एक गाने की, जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं किरण जी।
2: धड़कन फिल्म का जो गाना है नुसरत फतेह अली साहब ने गाना गाया है, और गाने के बोल है दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है। तो देखिए, यही तो है कि हमारे लिसनर्स इतने चाव से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है इसलिए सबको बेहद पसंद आता है। तो चलिए सुनते हैं किरण जी की फरमाइश का ये गाना।

0: तो ये था फिल्म धड़कन का गाना। और मनीष जी, आपको पता होगा कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी नाम बहुत पसंद है ना, कि उन्होंने काफी खिलाड़ी सीरीज की हुई है। सबसे पहले उनकी आई थी खिलाड़ी, फिर सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420। तो मुझे लगता है वो
1: खिलाड़ी 786,
0: हाँ वो भी एक फिल्म थी। मुझे नहीं याद, मैंने वो देखी, लेकिन
1: वो भी बड़ी अच्छी मूवी थी और उसमें भी काफ़ी एक्टर्स थे, एक्शन मूवी थी और काफ़ी किरदार थे उसके अंदर। मिथुन चक्रवर्ती था और आसिन जो गजनी में थी वो थी उसके अंदर, और राज बब्बर और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे उसमें। तो काफ़ी कॉमिक रोल किया था उसमें, तो एक्शन और कॉमिक थी तो काफ़ी है।
0: जी हाँ, वही देखिए खिलाड़ी की बात कर रहे थे तो मुझे इसलिए याद आया कि हमारी एक लिसनर है श्रुति, वो सुनना चाहती हैं फिल्म खिलाड़ी का, जो मुझे लगता है आज भी अगर प्यार की बातें होती है, वादे की बात होती है, तो ये गाना हमेशा से हमारे दिमाग में आता ही है। तो श्रुति जी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का, वादा रहा सनम।

0: क्या प्यारा गाना है। और अक्षय कुमार जैसे एक्शन फिल्में किया करते थे ना, तो एक दिन वो भी ऊब गए थे क्योंकि उनको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ एक्शन फिल्म के लिए ही इन लोग मुझे ले रहे हैं। फिर उन्होंने मतलब होता है ना, मन में बहुत हमेशा इंसान को दिमाग होता है ना, कभी अकेलेपन में आप देखिए हम लोग इतनी सारी बातें सोच देते हैं ना, तो वैसा ही हुआ कि अक्षय कुमार एक दिन सोच रहे थे कि ये सब कोई भी एक्शन मूवी होती है तो ही उन लोग मुझे लेते हैं। और क्योंकि सबको पता था कि शुरू शुरू में उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन देखिए फिल्मों में मसाले तो चाहिए ही, तो कोई भी कॉमेडी सीन हो या कोई भी एक्शन होता है तो उसको अक्षय कुमार जी को ले लिया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने सबको कन्विंस किया कि प्लीज़ मुझे ज़रा हटकर रोल दीजिए, तो फिर धड़कन देखी हम लोगों ने, जैसे धड़कन में भी उन्होंने काम किया तो उसमें उनका एकदम से अलग से रोल था कि एकदम ही उसमें बिल्कुल भी एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सुलझे हुए बिजनेसमैन का रोल उन्होंने किया था। फिर वैसे ही फिल्म आई थी नमस्ते लंदन। और मनीष जी मुझे लगता है ये नमस्ते लंदन की स्टोरी अगर देखी जाए तो मुझे लगता है ये एकदम रियलिटी से एकदम कनेक्टेड फिल्म है, कि
1: बिल्कुल
0: इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है कि इंडिया से सब शादी करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पली हुई बड़ी हुई लड़कियाँ जो इंडिया को जाना बहुत पसंद होता है, तो बस वही है कि ये फिल्म के गाने भी सारे सुपरहिट, और अक्षय कुमार जी ने क्या इसमें काम किया है, और इसी फिल्म का बेहद प्यारा गाना है।
1: बिल्कुल, मेरे को भी बहुत पसंद है गाना, तो चलिए ये सुनते हैं। मैं जा रहा हूँ।

0: देखिए जैसे अक्षय कुमार की काफ़ी हीरोइनों के साथ उनकी अच्छी पेयरिंग हो रही थी, और उन्होंने बहुत सारी नई नई हीरोइन्स के साथ में काम किया है, कि 26 जैसे न्यू कमर्स के साथ उन्होंने काम किया है। और मुझे लगता है कि कैटरीना कैफ के साथ उनका जो पेयरिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने काफ़ी सारे हिट फिल्म दिए हुए हैं, कि देखिए सबसे पहले उनकी फिल्म आई थी कैटरीना के साथ साथ में हमको दीवाना कर गया, फिर नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग, दे दनादन, तीस मार खान, सूर्यवंशी। तो यहाँ पर मनीष जी मुझे लगता है हम सुना दें सिंह इज किंग का बहुत ही सुरीला गाना है, और गाने के बोल है
1: तेरी ओर।

वाह क्या प्यारा गाना है, और इनके पीछे राहत फतेह अली जी की भी आवाज़ बहुत अच्छे से सूट होती है। तो ये जो गाने चल रहे हैं, तो कैटरीना के साथ में उन्होंने एक और भी बहुत ही प्यारा गाना है, फिल्म आई थी दे दनादन का गाना है कि सब रिश्ते नाश्ते हंस के तोड़ दूँ। तो मैं चाहूँगी हमारे लिसनर्स को ये गाना भी सुना देते हैं।

0: अक्षय कुमार जी ने बहुत सारे हटकर रोल भी किए हुए हैं। उसमें एक फिल्म आई थी ना कि तशन, आई गेस, उसमें उनका, आप देखोगे ना, उनका जो अपीयरेंस उस फिल्म में दिखाया गया है इतना अजीब सा वो उसमें लग रहे हैं। तो वो कोई भी रोल लेने के लिए हमेशा से रेडी होते हैं। मनीष जी, ऐसा होता है ना कि देखिए, शुरू शुरू में आपको कामयाबी हासिल करने के लिए आप हमेशा ऐसे रोल लेते हो कि जिससे आपकी इमेज जो है वो अच्छी रहे। तो ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार जी ने सारी फिल्में हिट दी हुए, वो पिछले 35 साल से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें से उन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्म की हुई होगी। उसमें से बीच में वैसा भी वक्त आया था कि उनकी कोई भी फिल्में चल नहीं रही थी। उन्होंने 16 फिल्म उनकी बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी, तो आपको पता ही होगा। ये बात तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, तब उनका एक फ्रेंड यहाँ पर टोरंटो में, कनाडा में रहता था, तो उसने अक्षय कुमार को कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग साथ में मिलके कुछ बिजनेस करते हैं। तो अक्षय कुमार जी ने भी तैयारी कर ली थी और यहाँ पे
1: सिटीजनशिप भी ले ली थी, बिल्कुल।
0: और देखिए, लेकिन तकदीर में कुछ लिखा अलग होता है। सबकी सब फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी, लेकिन उनके हाथ में काफ़ी फिल्में थी, उसमें से 2-4 फिल्में वापस से हिट हो गई और फिर उन्होंने यहाँ पर आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो इसलिए बाद में जब वो एस्टैब्लिश होने के बाद में वो हर किस्म के रोल करते थे। तो अगला ये जो हम लोग गाना मनीष जी सुनाने वाले हैं, जैसे मैंने कहा फिल्म का नाम है
1: तशन,
0: और बेहद सुरीला गाना है।

0: fighting from migraines. Get new Advil migraine.
1: करीना के साथ में और एक बहुत ही प्यारा गाना है, फिल्म आई थी गब्बर इज बैक, तो मनीष जी मैं चाहूंगी वो गाना भी हमारे लिसनर्स को सुना लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद.

0: अरे बीच में
1: अगला गाना जो है हम सुनाना चाहते हैं, ये एक रिक्वेस्टेड गाना है, जेसिका जी सुनना चाहती हैं। फिल्म आई थी ब्रदर्स, फिल्म का सोनू निगम की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, सपना जहां दस्तक ना हो, दस्तक ना दे।
2: ये देखो क्या रहा है, ये देखो।

0: आज का ये प्रोग्राम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच, आपके हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं. तो आप ऐसे ही हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए और हम आप ही की फरमाइश के गाने आप तक पहुंचाते रहेंगे. अगली जो फरमाइश आई है मनीष जी.
1: जी हाँ, अंजू वर्मा जी ने रिक्वेस्ट करी है इस गाने की, वक्त से दिन और रात फ्रॉम द मूवी वक्त. चलिए सुनते हैं गाना. थैंक यू सो मच अंजू जी हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए और फरमाइश करने के लिए.

0: मनीष जी, अक्षय कुमार जो है ना, उनको देशभक्त है हमारे, रियल में देशभक्त हैं। उन्होंने, पता है, उनके दिमाग में हमेशा से एक बात चल रही थी, वो इंडियन सोल्जर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो भी हमारे जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो जब ड्यूटी पे होते हैं तब शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। तो उन्होंने यही बात गवर्नमेंट से की और गवर्नमेंट को उनका ये जो सुझाव था वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था भारत के वीर। और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने सोल्जर्स के लिए
1: डायरेक्टली उनको डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल,
0: तो वो बोलते ना, वो रियल में एक देशभक्त हैं। और हमारे ऐसे ही काफ़ी सारे लिसनर्स हैं जो रिलीजियसली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। ऐसे ही हमारे एक लिसनर है बजाज बाजवा जी, और अभी उनका फ़ोन आया था, वही उन्होंने कहा कि वो 2006 से यहाँ पर आए हैं और तब से लगातार हमारा ये संगीतमाला प्रोग्राम सुन रहे हैं। वो टोरंटो में थे तब, तो वहाँ पे 24 घंटे का रेडियो हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर आते ही उन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे कोई इंडियन प्रोग्राम है हमारे बॉलीवुड का, तो तब से वो सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और वो बहुत ही सराह रहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मजबूर हो जाते हैं कि हम आपको कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच, यही आपका प्यार है। और वजह जी की फरमाइश पर हम सुनाना चाहते हैं फिल्म
1: पैडमैन का ये गाना, आज से तेरी।

तो ये जो ये फिल्म थी पैडमैन, उन्होंने हमारे सोसाइटी में जो लेडीज़ जो हैं उनको जो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है उनकी अवेयरनेस के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर उन्होंने खुद के होम प्रोडक्शन में फिल्में बनाई हैं। और अगला जो गाना है वो फिल्म आई थी रुस्तम, बेहद प्यारा गाना है। हम वो गाना सुना देते हैं मनीष जी, तेरे संग यारा।

0: तो आज के प्रोग्राम में हम सुनवा रहे हैं अक्षय कुमार के गाने और उन्हीं के बारे में हम काफ़ी सारी बातें भी आपको बताते रहे हैं। और ये अक्षय कुमार के गाने चल रहे हैं और फिल्म केसरी का गाना ना बचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता मनीष जी।
1: बिल्कुल, और इसके बोल भी तेरी मिट्टी इतना छू लेते हैं दिल को। और चलिए सुनते हैं।

0: गाना हम चलाना चाहते हैं लेकिन टाइम बहुत ही कम पड़ जाता है। और देखिए आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो अक्षय कुमार जी के ऊपर किया, पता नहीं टाइम वक्त कहाँ चला गया। और हो गया है वक्त टाटा बाय बाय कहने का। और जाने से पहले हम और एक फरमाइश का गाना भी प्ले करेंगे। कौशिक जी और विवान जी सुनना चाहते हैं फिल्म आई थी बॉस, और उसका गाना है पार्टी ऑल नाइट, क्योंकि जाते जाते यही गाना चलाएंगे। आप ये गाना एंजॉय कीजिए और हम आपसे लेते हैं आज्ञा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।
1: बिल्कुल, और मेरी तरफ से भी दोस्तों आप सब पार्टी ऑल नाइट करें और बिल्कुल एंजॉय करें इस सैटरडे को और संडे को, दोनों दिन और पूरा हफ्ता। अगले हफ्ते हम सैटरडे को फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।

0: जी क्या बात, आज तो कुक स्टूडियो के गाने चल रहे हैं और
1: कुक स्टूडियो सीजन 15।
0: चुप हो जा भाई, अभी और भी चलेंगे, देखो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, कोई नहीं और भी चलाएंगे गाने। ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, ब्रेक पे पहले चले जाते हैं और उसके बाद थोड़े से जो है ना अपने बचपन के गाने सुनाएंगे। खैर बहुत सारे अगर बच्चे सुन रहे हैं तो हमारे बचपन के, यानी मेरे बचपन के गाने, तो लेट्स गो एंड हैव अ ब्रेक, क्विक ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक।
2: Galaxy Psychic and Crystal Fairs returns from September 17th to 20th at a Travel Lodge at 106 Circle Drive. Find some of Canada's top psychics, mediums, astrologers, palm readers, and healers, and a new Make Your Own Intention Candles booth. Plus, lots of beautiful crystals and jewelry and $3,000 in door prizes. See you this weekend. Check out galaxypsychicfairs.com.
3: It's Rod again from OK Tire. School is now in full swing, and so are the daily rides to class and fall activities. Visit OK Tire in Saskatoon so Mom and Dad's taxi stays running in tip-top condition. At OK Tire, your requested repair always includes a complimentary vehicle inspection. We take care of everything automotive so you can get back to life as a family taxi driver, coach, judge, and jury. OK Tire. Service, repair, and tires.